का दास नीच कुल सुने तिसका संग खिन मैं उदरै कोट भजन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुरते विद जानी मन अपने मैं फिर प्रचेत बिंस जाए माया के हेत हरे बनासी तुमरे संग मन मेरे रच राम कै रंग जाके काम उतरे सा पूख जाके काम न जो है दूत जाके काम तेरा बड़ गमर जाके काम होवे तू अमर जाके चाकर को नहीं डान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी करोब सिखा जाके ऊना ही कहूं बात एक आप अनेक भात जाकी दिस हो सदा ने

करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मैं रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सपाज नाम रंग मन पीत न लावे कोट कर्म कर तो

सब गुण के सीनाए हरपूर पंडारिया चौदस जपिए नाम सुख सवारिया मैं आई ओट तुहार नानक बलिहारिया गुर का ड्यो पूजा पसार मोक पारिया मैं जीतो जन्म पार बोर नहारिया मैं पायो सर्व निधान कथ कथारिया अदर गए सो बाबंत भांल उडारिया जय नानक लद्दा रतन अमूल अपारिया गुर सेवा पौजो तरिया कहो पुकारिया गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण हर अंग अंगो चप जेवा हर एक मंगो रहाओ तज हो मैं गुर ज्ञान भजो मिल संग तुर कर्म लिखियो जो दिशे सो संग न गयो साकत मूल लगे पच मोयो मोह नाम सदा रव रहो कोट मदे किने गुरमुख लहो हर संतन कर नमो नमो नौ निध पावे।

जब तू तो क्या गुरु चंदन शीतलायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुरु ज्ञान दिपायो, पाप सागर गहरो चर्च संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा पायो, भोखंड दुख पंजनो भगत बछल हर नायो, अनाथ ना कृपाल दीन सुमरथ संत उठायो, निर्गुणियारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सर तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिख्या के भोगा, इन संग आंद ना जानी, हों सांचो हों खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ, हों सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी, जोवन बंत आचार कुलीना मन में होए गुमानी, ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंधम सखे पाछे तिनू को संपानी, जित लागो मन बासना अंध साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंधानी, दयाल पुरख करो नानक दास दसानी, जुमला

सब झूठ के तिना लेखे मैं मत जोवन गर्भ गाली दुद्धा थनी न आवे नानक सातन मिले मलाई बिन पर नींद न आवे मुंदन मानड़िया जियो बिन तनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उड़तारे ना बिन करवास नाई पुछो सखी सहेलिया बिना प्रीत प्यार नाई बसे साच सहेलिया सच मान सजन संतोख मेला गुरमती सो जानिया नानक नाम न छोड़े सा धन नाम सह समाणिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम फिर रावे हा गुर पुछ लिखोगी जो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछताणिया निखल जातो रहे अस्थिर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द ने उन वेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी यशपुनी जियो हम कर साज ने आया मिल वर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहसी मुंद मन उमाहो साजन हंसे दुष्ट ब्यापे साज जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनंती

हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाइए जोर कहे सोई पर की जाए तिसना अग्न बुझाइए हर साचा सोई तिस बिन अब न कोई बिन सेव्या सुख पाए

सुहाई कापर तन सुहावे जावर भावे गुरमति जित लाइया सदा सुहागण जा सतगुर सेवै गुर कै अंक समाइया गुर शब्द मिला तां बिरा विला नाम संसारे नानक कामण नाम प्यारी जा हर के गुण सारे साता रंग माणे जीव अपने नाल प्यारे इनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हमें मारे इन मिले प्यारे सतन सुहागण।

आपे बख्शन हारा अवगुण बख्शन हारा कामण कंत प्यारा कटकर रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भक्ति पाई है सतगुर बूझ बुझाई सदा नंद रह दिन राति अंदन रह लिवलाई नानक सहजे हर वर

पाणी डूमुए बिन पाणी गत ने जानी हमें तात संसारे जुग रिया सो सबको जासी उभरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम बखाने आप तरे कुतारे नानक नाम बसे करे अंतर गुरु मिले प्यारे राम नाम बिन कोथे नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम बपारा राम नाम बपारा अगम पारा गुरमते तन पाईऐ सेवा सुरत भगत ए साची विचों आप गवाईऐ हम मतहीन मूर्ख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नान गुरमुख शब्द सुहावै अंधे हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए आपे गुणदाता आप गुण काटे हृदय ना बसाए नानक सत बलिहारी सच्चे विटो आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिरा जियो हर नाम ते आए मंजो दूर ना जाए पिरा जियो कर बैठे हर पाए कर बैठे हर पाए सदा चित लाए सहजे सत सभाए गुर की सेवा खरी सखाले जिसनों आप कराए नामो बीजे नामो जमे नामो मन बसाए नानक सच नाम बड़ियाए पूर्व लिखिया पाए हर का नाम मीठा पिरा जियो जा चाखा चित लाए रसना हरस चाख मोहे जियो अनरस साज गवाए सदा हरस पाए जा हर पाए रसना शब्द सहाय नाम त्याय सदा सुख पाए नाम रह

शब्द जित लाए मन मुक्त गवार पिराजी यो शब्द मन न बसाए माया का भ्रम अंधा पिराजी यो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिनु सतगुर पाए मन हुए आप गिनाए हर के चाकर सुहिले गुर

0: एक ओंकार सुख प्रसाद मेरे मन बैराग पे आजियो क्यों देखा प्रभु दाते मेरे मी सखा हर जियो गुरपुरख बदाते पुरख बदाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे उडीणिया कर करे सेवा शीश चाणी मन आस दर्शनी माणिया सास सास न कड़ी विसरे पल मूर दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते एक बिनो करो जियो सुनकंत प्यारे मेरा मंत्र मोलिया जियो देव चल तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीरे गुणवंत नाम दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे फिर दोस नाए सुखे दाते हो बिछुड़ी बुरियारे बिनवंत नानक दया धारो कर आओ ना प्यारे हमन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हौसरे अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभु देस देसा अर्प्या ता सी स्थान गुर पै संग प्रभु दिखाया खिन माए सगला दुख मिटिया मन चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगलन देसा बिनवंत नानक अंत मिलिया लोड़ते हम जैसा मेरे मन अंध पया जीव बाजी बधाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकर सखी मंगल गाया सामीद बंधव हर उपजया दूथों गवाया अनद बाजे बजे कर में फिर संग सेज बिछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला
1: पार जाति हर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम संत दर दुख लथा नाम की महिमा संतरद बसे संत प्रताप दुर्त सब नसे संत का संग

हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौडी संग रचे, सा छोड़ झूठ संग मचे। जो छड़ना सो अस्थिर करमाने, जो होवन सो दूर पराने। छोड़ जाए तिसका शर्म करें, संग सहाय तिस पर हरे। चंदन लेप उतारे तुए, गर्ता प्रीत पसम संग हुए। आंध कूब मैं पतित बिकराल, नाने काट ले हो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जाते, लोक पचारा करे दिन राते। बाहर पेखे अंतर मल माया, शब्द नहीं कुछ करे

जन सहज समाते सुने अंधा कैसे मार्ग पावे कर गह लेहो उड़न बहावे कहा बजारत बूझे डोरा निष्कहियो तो समझे पूरा कहा बिसन पद गावे गुंग जतन करै तो भी सर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो उहा उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करै

सुनह मिथ्या हस पर दर्भ को हिरह मिथ्या नेत्र पीत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चन पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लोभ लबावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलीत बेकारा बिन बुझै मिथ्या सब पै सफल देहे नानक हर हर नाम ले बिरथी सख्त की आरजा सच बिना कै होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन आंदे मुखिया वते ता कै दरगंद बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बहाई।

पर ब्रह्म सब जाने अपना की आए आपे माने आपे है आप अब करत नबेड़ा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाओ सियानप सगल ते रहते सब किस जाने आत्म की रहते जिस पावे तिस लय लड़ लाई थान थनांतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करें निमख निमख जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाय अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद सती अमृत खाहि तिस ठाकर को रख मन माहि जे प्रसाद सगंतन लावे तिसको

मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे पर सातु चार बिहारी, तिस प्रभ को सासा चितारी, जे पर सा तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप, जे पर सा तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पतर है, गुर प्रसाद नानक जस कह, जे प्रसाद सुने करनाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद सपूरन फल है, जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे।

पैरी साधक संग नाही को मंदा, साध संग जन परमानंदा। साधक संग नहीं हो ताप, साधक संग तजे सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साधक संग न कबहू तावे, साधक संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सहे। साधक संग बसे थन ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। साधक संग दृढ़े सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै करबान। साधक संग सब कुल उदारे, साध संग साजन मीत कटंब निस्तारे। साधु कै संग सो तन भावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग सोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्व थान गम, साध नानक साध के संग सफल जन्म। साधक संग नहीं किश काल, दर्शन पेट होत निहाल। साधक संग कलू खत हरे, साधक संग नरक पर हरे। साधक संग इहा उहा सहेला, साध संग बिसरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साधृत बसै, नानक उदरे सा सुन रसे। साधक संग सुनयो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ। साधक संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लागे प्रमीठा, साधु कै संग कट कट डीठा। साध संग पे आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध पिटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियान है। साध की उपमा तै गुणते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोई, अवर ना पेखे एक बिन कोई। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोक, जैसे सूर सर्व को सोख।

का यह गनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी क्या मन हुई प्रगास जैसे तारे ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी क्या मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी क्या नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी कुछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी

ज्ञानी ध्यानी गुर गुर आई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाई।

चौपाई संबद सतरह सह पनि जय अर्ध सस फुण तीन कही जय भाद्रव सदी अष्टमी रवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र उपख्यान तिरे चरित्रे मंत्री भूप संवादे

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही, दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास हुए सहाय, अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो, श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है, जिह जिठे सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरिया, करन औने दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय।

जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी आप संगता ने सोदा रहरा साहब जी दे पाठ अरदास हुक्मनामे सरवण कीते हन। सतगुरु साहब जी रहमत कारण साहब दी दर हाजरी प्रवान करन, दरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शन जी। आओ हुण आरती आरती दे कीर्तन आरंभ हो रहे हन। कीर्तन दियां हाजरियां भरदे हां जी। नाल ही आप संगता नूं बेनती है जो कि कल अते परसों 5-6 तरीक नूं जो शनि एतवार 2 दिन लगातार जहरे ते गरते गदके दे जो मुकाबले हो रहे हन, बहुत ही सिंघां ने मेहनत कीती है। पूरे अमेरिका तो जो टीमां आ रही हैं, 2 दिन जो गदके दे जोर होने हन, सो आप संगतां ने वध तों वध जो सिंघां दी हौसला अफजाई करनी है। गुरु घर हाजरियां भरनियां हन जी, नाल अपने बच्चों नूं लै के आउणा है, सो गदके दे जोर दिखाउणे हन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मंगो राम ते एक दान, एक रखना हो तै पै मंगो देह अपना नाम। सतसंगत असी सतगुरु पासों बहुत दाता मंगते हाँ, क्योंकि असी हाँ ही मंगते हम भीख कपे खारी तेरे, तू निज पत है दाता। दाता एक वाहगुरु है, असी सारे ही भिखारी हाँ। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे। सतसंगत असी मंगते हाँ, बड़िया दाता गुरु को मंगते हाँ। संसारी मंगा साड़िया बहुत हैं, पर कभी ये मंग नहीं मंगी भी सतगुरु नाम की दात बख्श। तो सतगुरु जी कहते विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, देह नाम संतोखी आ उतरै मन की भुख। होर जिन्या भी मंगा हैं कई बार सिर का बोझ बन जाए, दुखदाई बन जाए, पर एक नाम की ऐसी मंग है जिदे नाल जन्मां जन्मांतरां की भुख मनुख की मिट जाती है, खत्म हो जाती है। जदों भी सतगुरु की गोद में आईए, जिथे असी दुनियावी मंगा मंगते हैं उत्थे सतगुरु पासों नाम की दात मंगया करिए, यही अरदास है। सो कीर्तन का समा समाप्त है, थोड़ी

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे ताए, सब थाई हुए सहाय।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: गुरु
1: गुरु
0: गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

साहिब जी गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माह मिटावो सिमरो जास दिसंबर एक नाम जपत अगंत अनेक वेद प्राण सिमर सोदा अखर किन्ने राम नाम के अखर किनका एक जिस जीव सावे ताकि महिमा गनी नावे कांखी एक कै दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुख मने सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन बस राम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ नाम वसै प्रभ के सिमरन दूह जम नसै प्रभ के सिमरन सिमरन काल पर हरे प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत किश बिघन न लागे प्रभ के सिमरन अंधन जागे प्रभ के सिमरन पाओ नाम व्यापै प्रभ के सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जपता पूजा प्रभ के सिमरन बिनसे दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ के सिमरन दरगे मानी प्रभ के सिमरन होए सो भला प्रभ के सिमरन सफल फला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन उदरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभ के सिमरन सब के सुजय प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा अमृत नाम आए प्रभ जी बसे साध की प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा विनासी सिमरन ते लागे जने आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला प्रभ को सिमरे से पर उपकारी प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरे तिन अंध कनेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपाते अंधन जाग नान सिमरन पूरे पाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे प्रभ के सिमरन हर गुण बानी प्रभ के सिमरन सहज समानी प्रभ के सिमरन निश्चल आसन प्रभ के सिमरन कमल बिगासन प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जिनको प्रभ मया नानक तिन जन सुननी पया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन नी चौ कुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यों सगल कारा हर सिमरन मैं आप नकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन नानक गुरमुख

प्रोसेस हुआ है, तब से सख्त का होकर राज जब आप है। आप अपनी जोत तो कब निडर कौन कदर डरे, आपने चलता आप करने हार। नानक ठाकर कम पार अवनासी सुख अपने आसन तय जन मन को काम नासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास को सोए। जब अवगत गोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस पूछ लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर का दे, तब कौन सुटे कौन बंधन बाधे। अपना आप ये चल जा नानक, आपन रूप आप ये प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पथ होता। तह बिन मैल को कह तोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण। तय कौन कुमान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश। तय छल छिदन लगत को कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे। तय किसे भू कम तृप्तावे, कर्ण करावन करने हार। नान करते का ना समाज, अपनी शोभा अपन संग मनाई। तब कवन माए बाप मित्र सुध भाई, जय सर्व कला अपे प्रवीण। तय वेद के देव कहा गौ चीन, जब आपने आप आवरदारे। तब सघन सघन कहा विचारे, जय आपन ऊंचा अपना अपनेरा। तय कौन ठाकर कौन कहिए चेरा, विस्मर विस्मरे विस्माद। नानक अपनी गत जानो आप, जय छल छेद भेस माया। हुआ किसे व्याप्त माया, आप इसको आपे अधीत। गुण का ना ही प्रवेश, जय क्या एक एक पवनता। तय कौन चिंत किस लागे चिंता, जय आपने आप आपति हारा। तय कौन कदे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा। नानक आप इसको आपे पहुंचा, जय आप रचे परपंच कार। तय गुण में कीनो विस्तार, पापन तय पही का अवध को नर को सर्वंचाव। दाल जाल माया जंजाल, हमे मोह पन पैपार। दुख सुख मान मान प्रकार की अभिख्यान, आपन खेल आप कर देखे खेल। संकोचे तो नानक एक जय अवगत भगत आप। जय बसरे विसार संत प्रताप, दो पाका आपे तनी उनकी शोभा। उनू बनी आपे कौतुक करे नंचो, जापे रसभोग निर्जो। जिस पावे तिस आपन नाम लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसमार था गंध तोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकरा, आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया दूजा कह दिष्टा, राष्ट्रपति आप कते आप सुनने हार। आपे एक आप विस्तार, जात पावे तन सिष्ट पाए। अपने भाणे ले समाये, तुम ते पहने किशोए। आपन सूत सब जग परोए, जाको प्रभु जी आप जाए। सतनाम सोई जन पाए, सो सुंदर सी तत्का वेता। नानक सरल सिष्ट का जेता, जी यंत्र सत्ता के हाथ। दीन दयाल नाथ को नाथ, जिसरा के तिस कोय न मारे। सो मुआ जिस मनो सारे, तिस्ता जबर का को जाए। सब सरे एक निरंजन राय, जी की जुगत जाके सभा। अंतर बार जनो साथ, गुण निधान बेअंत पार। नानक दास सदा बलिहार, पूर्ण पूर है दयाल। सब उपर होवत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप। अंतर जमी रे हो व्या प्रित पाले, जीवन व भात। जो जो रचियो सोते त्याद, जिस भावे से लय मिलाए। भगत करे हर के गुंगाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या। करना हर नानक एक जाना जल लागा। हरे कह नाए, तिसकी आस न मृति जाए। सेवक को सेवा बनियाए, हुकुम बूझ परम पद पाए। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन वसे अहंकार। बंधन तोर पै निर्वैर, अंदर पूजा गुरु के पैर। हे लोक सुखे पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुनगावो परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उदार। अमृत वचन हर के गुंगाओ, प्राण तरण काए सुहाओ। आठ पैर पर पेखो नेरा, मिटे ज्ञान मन से अंधेरा। सुनो उपदेश सिर देव सावो, मन से नानक फल पावो। हलत पलत दोए ले सुहार, राम नाम अंतर उधार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन वसे ते साज प्रीख्या। मंतन नाम जबोल बुलाए, दूध दर्द मन ते बो जाए। सच वार करो वापारी, दरगह निवे खेपत मारी। ये काटे गिर खो मन माए, नानक बौर ना आवे जाए। तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उभरे राखन हार ते आए। निरपौ जपे सगल पौ, मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी। छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाई, दूख नाम जपत मन हो सूख। चिंता जाय मिटे अंकार, तिशन को कोई न पहुंचन हार। सर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमल जाकी दृष्ट, दर्शन पेख दो दृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सबल दर्शन सुंदर रूप। धन सेवा सेव प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकना आपद काल। अमर पै अमरापद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान देर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रकाश अष्टपति। संत संग अंदर डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सरल समिगरी एक स्कट माए, अनक रंग नाना दिष्टाए। नौने दे अमृत पुरख का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाध अनंत नाद, कह न जाए। चर्च समाध तिन देखिया, जे आप दिखाए।

कथना कथि न आवे तोट, कथ कथ कथि कोटि कोट कोट, देदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो, साचा साहेब साच नाए, भाख्या पाओ अपार। आख है मंग है देहे देहे, दात करे दातार, फेर के अग्गै रखिया जित दिसै दरबार। मोह के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक ए वै जानिया सब आपे सचियार। थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान। गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हाउ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण भाणे के नाए करी। जेती सिरठ उपाई वेखा, विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत धवल आकाश, सुनया दीप लो पाताल, सुनया पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया ईसर बर्मा इंद, सुनया मुख साला हनुमंद। सुनया जोग जुगत तन भेद, सुनया शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया सत संतोख ज्ञान, सुनया अठ सठ का इसनान, सुनया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनया लागै सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया सरा गुणा के गाह, सुनया सेख पीर पात साह, सुनया अंधे पाव है राहो, सुनया हाथ होवै असगाहो। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछै पछताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यो प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने पाव है मोख द्वार, मन्ने परवार है साधार, मन्ने तरै तारे गुरसिख, मन्ने नानक भव है न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।
पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाव है दर्ग है मान पंचे सो है दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते कह करना नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था परख्या जिनसूत। जे को बुझै होवै सच्यार तवलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस ते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाणै कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले हो रूप केती दात जाणै कौन कूत। कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पखसार असंख मोन लिव लाए तार। कुदरत कवण कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पख खाहे असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार। वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे।

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओह वेखै ओना नदर ना आवै बहुता एहो विडान। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेस। आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एकावार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेस। एक दूजी बौ लख हो हे लख होवह लख वीस। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस। ए तराहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाइय कूड़ी कूड़ै ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण न जोर। जोर ना जीवन मरण नह जोर। जोर ना राज माल मनसोर। जोर ना

उत्तम नीच न कोय, राति रुत्ति थिति वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरे कर्म पवै निशान, कच पकाई औथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वैसंतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त घड़ी है, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते,

अपेय है, अजीत है, अपीत है, त्रमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निर्सरीक है, निर्लंब है, असंब है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने।

अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्दं अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासे सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासे चर्पण छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं गमाने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद त्वप्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराजहे अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख नाराग जत्र तत्र दिशा विसा होए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हु नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल

कालन पूत अंग अब अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रनाढ़ अंड अंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरते चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमं न पित्र न कर्मं न काय अजन्मं अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिस अदिस अदृश अकृस भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आछिज देसै के आपिज भेसै के आगंज करमै के आपंज भरमै के आपिज लोकै के आदित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रवाहै के धर्मं तुजाहै के आशोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुपौ अनुपै के आद अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रंग विहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजा कै रही मै रिहा कै के पाक ब्याब हैं के गैबल गैब हैं के अपवल गुनाह हैं के साहन साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौन के सर्वत्र पावन के सर्वत्र देसै के सर्वत्र पेशै के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजै के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देसै के सर्वत्र पेशै के सर्वत्र कालै के सर्वत्र पालै के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजै के सर्वत्र राजै के सर्वत्र सोखै के सर्वत्र पोखै के सर्वत्र त्राणै के सर्वत्र प्राणै के सर्वत्र देसै के सर्वत्र पेसै के सर्वत्र मान्या सदैवं प्रधान्या के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र भानै के सर्वत्र मानै के सर्वत्र इंद्रै के सर्वत्र चंद्रै के सर्वं कलीमै के परमं फहीमै के अकल अलामै के साहिब कलामै के हुस्नुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशल सलामै सलिखत मदामै गनीमल सकस्तै गरीबल परस्तै बिलंदल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजू अल निधानै हरिफल अजीमै रजायक यकीनै अनेकल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल नवाज हैं गनिमल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रपुक्त प्रभा हैं सुजुक्त सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्घं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं के नरकं प्रणास हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुक्त प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंद है अबंद है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਵੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸੱਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀ ਕਹੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕੇ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕੇ ਰੋਜੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨਿਮਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕੰਨ ਹੈ ਹਰਾਸਲ ਫਿਕੰਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂ ਹੈ ਕੇ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰੰ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸਲ ਅਪੇਖ ਹੈ ਜਮੀਨਲ ਜਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੇ ਜਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਧ ਪਾਰ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਅਰਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਗਤਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੋ ਏਕੈ ਸਦਾਹੋ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛਿਜ ਗਾਤ ਅਜਿਜ ਨਾ ਬਾਤ ਅਨਝੰਜ ਗਾਤ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨਠੱਟ ਅਪਾਰ ਆਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਣਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾਲਿਆ ਹੈ ਅਰਕਾਲਿਆ ਹੈ ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਉਬਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨਿਆ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸਿਆ ਹੈ ਸਰਬਨਾਸਿਆ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਪਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਰਣੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਿਆ ਹੈ ਨਿਰਪਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਬਪਾਇਕ ਹੈ ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਪਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬ ਆਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ

तंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार अबिचार है सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचिक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र राधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे।

जग श्री भगवान को भेद न पायो, को बुतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री मुख

तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राब कही पूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरे सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल का एक बार त्या है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरे सट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होए, दुष्ट छह छह सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी।

पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल विख सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छह करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत।

0: मुर्गे आखिए पाणा लई सजाए महला पहला।
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल और सड़की सजे ना मैं उतरे ना ही मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते भले संसार दिन लगा रब सिद्धि देखने विचार रंग हसा रंग रो।

विस्तार सहित जो पवित्र शब्द है इस नूं सूही राग विच गायन करना है। मन मर्जी नहीं करनी और अष्टपदिया अठा पदिया वाले शब्द महला चौथा चौथे पातशाह धन गुरु रामदास जी की रचना तो उचारण किया। घर दूजा जेड़ा है वह भी संगीत नाल ही संबंधित है। जो ताल है वो दूजे घर का इस दे नाल बजाया जाएगा।

बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुर शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए, नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया। ए जियो बहुते जन्म भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। पहला अकाल पुरख नू जीव आत्मा ते तरस आउंदा गुरमुखो, फिर वह पूरा गुरु मिलांदा है, गुरु शब्द बख्शदा है। शब्द की बरकत नाल जीव आत्मा परमात्मा विच अपेद हुंदी है। अज भी सतगुरु यही अरदास कर रहे हैं, कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम ते आई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पे आप विचाई।

हे दातार ए जड़ी तू भुख देना है ए जड़े तू दुख देना है ए भी साडे भले वास्ते देना है। कदी कदी बहुत ज्यादा सुखा विच गाफल हो के मनुख जीवन का प्रयोजन भुल जाता है ते फिर तुसी दुखां दी चौंबड़ ला के सानू माया दी गाफलता विच सुत्यां पियां नू जगाण दा पर उपकार कर दे। इसलिए दुख भी तुझे त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सुख मनाई। जे तुसी मैनू इस प्रकार भुखे रखो ते मैं इस तरह प्रतीत करा भी मैं भुखा नहीं सगो मैं रज्या होया हाँ, मैं बड़े पदार्थ छके ने, मैं किसी नूं इह ना आखा भाई वेखो मैनू ते वाहगुरू दो डंग दी रोटी भी नहीं देंदा। कोई पुछे भी गुरमुखो भोजन छकिया, हाँ जी अज ते बहुत पदार्थ छके ने, अज ते कुछ ज्यादा ही छक लिया, किसे कोल मैं कमजोरी ना विखा, मैं फिर भी तेरा शुकर शुकर करदा रहा। ते दुखां विच भी मैं सुखां वर्गी बिरती बनाई रखा, डोला ना गिला ना करा, शिकायतां ना करा, मैं खिड़े मथे आखा इहदे विच भी कोई भला है।

दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा काज सब सवारना, सबना गल्ला सबरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो अरनाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, करता तेरा सब पिछे जिस देश।

सतगुरु प्रसाद का कलूर करदम आलम दुनियाए आसमान जमी दरख्त आव पैदास खुदाए बंदे चश्म दीदम फनाए दुनिया मुर्दार कुर्द निगा पल हवाए रहाओ गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बकुरा दिल कब्ज कब्ज का दरो दोज कुसा जाए वाली नियामत बेरादरा दरबार मिलकना जब अजरा ईल बस्तनी

रहाउ। प्राव कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्राव कै सिमरन दुख जम नसै, प्राव कै सिमरन काल पर हरे, प्राव कै सिमरन दुश्मन तरे, प्राव सिमरत काज बिगल ना लागे, प्राव कै सिमरन आनंद न जागे, प्राव कै सिमरन पहो ना व्यापै, प्राव कै सिमरन दुख ना संतापै, प्राव का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग, प्राव कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नाव निध, प्राव कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्राव कै सिमरन

वर्ख है। भगत जना की बरतन नाम, संतना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम दुरै जन कोट।

प्रभ दीना। हर हर जन कहे ओट स्थानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात इह हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसे, संत प्रताप दुर्त सब नसे। संत का संग वडभागी पाईए, संत की सेवा नाम त्याई है। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे। जन कोए सलोक बहु सात्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब डढोल पूज सनाही। हर हरे नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान। सब ध्यान खड सात्र सिमृत बखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन बदे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमै, कर राती व्रत नेम करें।

ज्ञान के तेन पाया अगंत साहु अपनी दे रास खाद पीत बरते अंद उलास अपनी अमान कह बहर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे।

कहे होवत सुचा बिरथा नाम बिना तने अंध मुख आमत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बृथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन बिन बृथे सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम तन धन ते जन जेह घट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ रह तबर कशबर कमावत मन ही प्रीत मुखों गण लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख न काहू पीन अपर उपदेस आप ना करे आवत जावत जन मैं मरै

ज्ञानी ते काशीपुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी के दृढ़ अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ते आन।

पल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदाख्यर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नानक। ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी

नानक रत्ना प्रावृति बहुविध अंक प्रकार अस्तपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते

देवलागी। कई कोट प्रभु को खोजन्ते, आत्म मह पार ब्रह्म लहन्ते। कई कोट दर्शन प्रभु प्याह तन को मिले प्रभु अमनास, कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तन लांगा रंग। जन कहो आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धान्य।

कबहू सद साधक बहु ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होय दिया, अनक ज्यों परमे परमिया, नाना रूप ज्यों सुवांगी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे ते वे नचावे, ज्योतिह पावे सोई होय, नानक दूजा वर न कोय, कबहू साध संगति हो पावे, उसे स्थान ते बहर न आवे, अंतर होय ज्ञान प्रगास, उसे स्थान का नहीं विनाश, मान तन नाम रते एक रंग, सदा बस सह पार ब्रह्म के संग, ज्यों

हर दरगह कहो कैसे गवे। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए। जब लग जाने मुझे ते गाछ होए तब इसको सुख नाही।

सजाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हौ छूटै, सहस खटे लाख कोठ तावे, त्रिपत नावे, माया पाछे पावे, अनक भोग भिख्या के करे, नह त्रिपतावे, खाप खाप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ वृथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करामन आपे आव, सदा सदा नान कर जाव, करन करामन करने हार, इसके हाथ कहां विचार,

सो सेवक कह किस दे डरे जैसा सा तैसा दृष्टाय अपने कार्य में आप समाय सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरप्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब कहे मूल नानक सो सुख मसोई अस्थूल नह कहे जन्मे नह कहे मरे आपन चलते आप ही करे आमन जामन दृष्टन दृष्टा गयाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मह आपन के जुगत रथ था पी उथाप अविनाशी नाय कज खंड धारण धारे हो ब्रह्मांड अलाख्य पेव पुरख प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार रुद्रय तनमंत्र

कौतम करवाण जो किस करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपाए होवे सोए करने हार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना।

कोय, तिस बिन नाही तेरै किछ काम, गत नानक जापवे कहर नाम। रूपवंत होय नाही मोह, प्रभ की जोत सगल घट सोह, तनवंता हो क्या गर्भ, जा सब किस तिसका दिया दरबै।

लपट रहे हो रस डो भी पतंग, राम नाम जप हिरदय माहे नानक पासे ती कर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया, ताजब मान ले हो मन बोल राम नाम हिरदय मैं तोल।

कह सद बलिहारी चरण साधके तोय तोय पियो अर्प साधक अपना जियो साध की तूर कर हो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान सा सेवा वडभागी पाइये साध संग हर कीर तुन गाइये अनक बिगन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रास चाखे कोट गही संत दरियाया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक कौ जी वालन हार भूखे कौ देवते आधार

सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुह कहत, साची दृहत, साचा अंकार, सच वरते, साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक, सोजन सच समाता सरोक, रूप नरेख नरंकेश, त्रिगुण ते प्रभ पिहन तिसे बुझाए, नानक अज सोवे सो प्रसान अष्टपदी।

कर हाथ मानस जतन करत बहुपात तिसके करत बिरथे जात मारे राखे वरन कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोज कर हेरे प्राणी जप नानक प्रभ लाखी मिडानी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तन द्रपिए नाम रतन दिन गुरमुख पाया तिस किछ अवरे नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग सुनामो सुखर नाम का संग नाम रास ज्यों ज्यों तृप्ता ने मन तन नामे नाम समाने उठ बैठ सोवत नाम कहो नानक जान कै सदकाम

नाथ इहो तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मनते कास राख मन माहि सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन कव चार कुंठ उठ तावे सो तन हर सेवा ते पावे।

बृजावस्पति जब कार्य कह न दृष्टेता पाव पुन तब कहते होता जब धारी अपन संसमाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सो कहो किसे व्याप्त जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किसे उत्परम अपन खेले आवृति जानान करने हार न दूजा जब होत प्रभु केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस गौ गणी जब एक है हरग में अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज सुपाय तब सेव सकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो धरे तब कवन निडर कवन कद डरे अपन चलते आप करने हार नानक ठा कुरग में अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म वर्ण कहो कहां बिनासन

पूत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन सुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही चर जा नानके अपने रूप आप ही उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्माण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कौकीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कमन तृप्तावे।

पहुँच जाओ। जय आवृत्यो प्रपंचकार तेह गुण मह कीनो विस्तार, पाप पुन तह बहि गहावत, कौ नरक कौ स्वर्ग मंशावत।

जन को सदा नमस्कार स्लोक पूरा प्रावे आराध्या पूरा जाका नाव नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साह साह सिमरो गोविंद माने अंतर की उतर आए तिंद।

सग्रसो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत मित कही है हर की ए पतत पवना ओह टोवै टोर हाथ चम चमरे हर उदरियो परे ओ सरना प्रभ दीन दयाल भगत भवतारन हम पापी राख पपना हर दासन दास दास हम करियो जनन।

गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूज है पूज हो नित सेव हो दिन सुसब रहनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ अनको पाप चित भी है बहु तेरे सा होवे जे बात होवे नी अपना भला सब कोई बांछ है सो करे जो मेरे चित ना चितैनी मन की मत त्यागो हर जन ए हा बात कठैनी अन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी मत सुमत ते

प्रसाद। एको रूप सगलो पा सारा आपे बन जाप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब जब जाइए तत् दृष्टाय रहाओ अन करंग निर्गो निकरंगा आपे जल आप ही तिरंगा आपे ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानके प्रभ सदि मुक्ता बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना।

गुप्त प्रगटना आप ही घट घट आप अलिपनारा आपे अवगत आप संग रचना कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पांचवा फूले मार्ग जिने बताया ऐसा गुर वड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी पई सिमर सिमर विदाता साध संग नानक रंग माणिया कराया पूरे कर गुर आणिया। बिलावल महला पांचवा सर्ब निदान पूर्ण।

आए बसो कर देश में एह पले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे लह गए बेयोग। बिलावल महला पांजवा काहू संगन चाल ही माया जंजाल उठ सुधारे छतरपत संतन के ख्याल रहाओ अहम बद को बिनसना एह तुर की टाल बहजोनी जन में मर है बिखिया बिकराल सत बचन साधु कह नित जप है गोपाल सिमर सिमर।

नहीं आवै, जोग जग जिफल ते मन, जो प्रभु जस बिसरावै, मान मोह दोनों को पर हर गोबिंद के गुण गावै, कहो नानक हे बिद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावै, बिलावल मोहल्ला नौमा, जामै भजन राम को नाही, ते नर जन्म खार्त खोया, जय राखो मन माही रहाओ, तीर्थ करे व्रत फुन राखै, नह मनुआ बस जाको, निफल तरम ताहि

तुम ताहे पछानो भगत हीन जो प्राणी कलमे मुक्त नाम ते पावत गुर जे भेद बतावै कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावै। बिलावल अष्टपदियां महला पहला कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट वसै देखै सब सोई गुरमुख बिरला बुझै कोई बिन पै पै भगत न होई शब्द रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाओ ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहने ते रहे न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान त्यान सब गुरते पाई साची रहत सा।

अर्थ हृदय नाम सदा कीरतार्थ साची दरगह पूछ न होए माने हुक्म सी जय दरसोए सतगुर मिले तै तिसको जाने रहे रजाई हुक्म पछाणे हुक्म पछाण सच्चे दरवास काल बिकाल शब्द पै नास रहे अतीत जाने सब तिसका तन मन अर्पै है एहो जिसका ना ओ आवे ना ओ जाए नानक साचे साच समाए बिलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसमा एक ओंकार।

दरकर महल ठहर कैसे पावे, हर जियो सेविये अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभिमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे

लागी ताहे तज आन कतहे न जाहे। हर राम नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उधार पै तरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत तज गए पाप विकार हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखिए बिस्माद चख पूरन चख आनंद पूरन साद नह डोलिए इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत। तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम न पेखे नैन सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण

संसार विख्या कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पूजा प्रभ जी लेहो हर नाम अपना देहो प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बादी देहे बिन भजन होवत खे जम दूत महाप्यान चित गुपत कर मैं जान दिन रैन।

सो सर्व फल हर ले कुल समूह करत उधार संसार उत्रस पार हर चरण बहुत ताहे मिल साध संग जस गाय हर पैज रखे मुरार जर नान हर नानक शरण द्वार बिलावल महला पहला थिति कर दसवा जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार निराला अमर अजूनी जात न जाला अगम गोचर रूप न रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया जो दे जो देख दिखावे तिसको बल जाई गुर प्रसाद परम पद पाई क्या जप जापो बिन जगदीसै गुर कै शब्द महल कर दीसै रहाओ दूजे पाए लगे पछताने जमदर बादे आवण जाने क्या ले आवहै क्या ले जाहे सिर जमकाल से चोटा खाहे बिन गुर शब्द ना छूटस कोए पखंड कीने मुक्त ना होए आपे सच किया कर जोड़ अंडज फोड़ जोड़ बिछोड़ तरत कास किए बैसन को थाओ रात दिनंत किए पौ पाओ जिन किए कर विखण हारा अवर न दूजा सिरजन हारा तृतीया ब्रह्मा।

तीन भवन में एको जाने सब सुच संजम साच पछाणे तेर स्तरवर समुंद किनारे अमृत मूल शिखर लिवतारे डर डर मरे न बूढ़े कोए निडर गूढ़ मरे पत खोए डर में कर कर मैं डर जाने तख्त निवास सच मन पाणे चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर के कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहा लिब लाए अमावस चंद गुप्त गैनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन ज्योत तिह लोई कर कर विखै करता सोई गुरतै दिसै सो तिस ही माहे मनमुख पूले आवै जाहे कर दर थाप थिर थान सुहावै आप पछाणे जा सतगुर पावै जय आसा तह बिनस बिनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जाल ते रहे उदासा प्रणुत नानक हम ताके दासा बिलावल महला तीजा वार सत कर दसमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरता अवरन कोई ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सुहोई नाम रते सदा सुखोई गुरमुख बिरला बुझे कोई हृदय जपने जपो गुणतासा हर अगम गोचर अपरंपर स्वामी जन पगलग त्यावो हुए दासन दासा रहाओ सोमवार सच रहा समाए तिसकी कीमत कही न जाए आख आख रहे सब लिवलाए जिस देवै तिस पल्लह पाए अगम गोचर लखिया न जाए गुर के शब्द हर रहा समाए मंगल माया मोह पाया आपे सिर सिर धंधे लाया आप बुझाए सोई बुझै गुर के शब्द दर कर सुझै प्रेम भगत करे लिब लाए होमे ममता शब्द जलाए बुधवार आपे बुध सार गुरमुख करणे शब्द विचार नाम रते मन निर्मल होए हर गुण गावे होमे मल तुए दर सच्चे सद शोभा पाए नाम रते गुर शब्द सुहाए लाहा नाम पाए गुरुद्वार आपे देवे देवन हार जो देवे तिसको बल जाइए गुर प्रसादी आप गवाइए नानक नाम रखो उरतार देवन हारे को जयकार वीर वार वीर भरम पुलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए आप उपाय कर वेखै वेका सबना करते तेरी टेका जी जंत तेरी सरनाई सो मिले जिस लह मलाई शुक्रवार प्रभ रहा समाई आप उपाय सब कीमत पाई गुरमुख होवै सु करे विचार सच संजम करनी है कार वर्त नेम निता प्रत पूजा बिन पूजे सब भाव है दूजा शनिश्चर वार

त्रिपवन सारे राम कट कट गबरहिया अलख पारे राम अलख पार अपार साचा आप मार मिलाई है होमे ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है दर जाए दर्शन करी पाणे तार तारण हारिया हर नाम अमृत चाख त्रिपति नानका उरतारिया बिलावल महला पहला मैं मन चाउ कणा साच विगासी राम मोही प्रेम प्रे प्रभ अबनासी राम अभिगत्यो हर नाथ नाथ है तिसे पावै सोथी है किरपाल सदा किरपाल दाता जी अंदर तू जिये मैं अबर ज्ञान न ध्यान पूजा हर नाम अंतर बस रहे पेख पवनी हट न जाना नानका सच गह रहे पिनड़ी रहन पली दिनस सुहाई राम निज कर सुतड़िए पिरम जगाई राम नव हान नव तन शब्द जागी अपने पिर पाणिया तज कूड़ कपट सुभाव दूजा चाकरी लुकाणिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पाणिया जाग सुलो नड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मनड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्बाणी को बिरला गुरमुख बूझे ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिपवन सोजी सूझ ए रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया ओ पूर रहया सर्ब ठाई नानका उरतारिया महल बुलाइड़िए भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सीजस देही राम मन मार रीजै शब्द सीजै त्रै लोक नाथ पछाण ए मन डीग डोलना सदा मन डीग डोलना जाए कतही अपना पिर जान ए मैं आधार तेरा तू खसम मेरा मैं तान तकिया तेर ओ साच सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर नबेर ओ संत बिलावल महला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हर प्रभ से जे आया मन सुख समाणा राम गुर तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माणा राम बडभागियां सुहागणे हर मस्तक माणा राम हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाणा राम निमाणिया हर माण है हर प्रभ आपै राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापै राम मेरे हर प्रभ पावै सो करै हर रंग हर रापै राम जन नानक सहज मिलाया हर हर त्रापै राम मानस जन्म हर पाइय हर रावण बेरा राम गुरमुख मिल सुहागणी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म न पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मंतन रंग पीना राम भगत बचल हर नाम है गुरमुख हर लीना राम बिर हर बिन हर नाम न जीव दे ज्यों जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बिलावल महला चौथा श्लोक हर प्रभ सजन लोड़ लहो मन वसे बड़ भाग गुर पूरे वेखा लिया नानक हर लिब लाग शंत मेरा हर प्रभ रावण आइया होमे बिख जागे राम गुरमत आप मिटाया हर लिब लागे राम अंतर कमल पर गासिया गुर ज्ञानी जागे राम जो नानक हर प्रभ पाया पूरे बड़ पागे राम हर प्रभ मन हर प्रभ हर मन पाया हर नाम

अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगटियाई राम। जो नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राबिया जा हर प्रभ भाई राम। अखी प्रेम कसाइया जो बिलक मसाई राम। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम। जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिबलाई राम। हम मूर्ख मुग्ध मिलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु सुबास है जिन होमे मारी राम। जिन बड़ भागियां बड़ भाग है हर हर उरतारी राम। जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम। बिलावल महला पंजमा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मंगल साज प्या प्रभ अपना गाया राम। अबनासी बल सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वडे भागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिनवंत नानक करो

0: मिल संत आए प्रभ त्याए बने अचर जांझिया मिल कतर हुए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांझिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम प्रभ कर आयड़ा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत बिछुनिया आनंद अंदन बजे बाजे अहंग मत की मन त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी शांत संग लिब लागी बिलावल महला पंजमा भाग सुलखड़ा हर कंत हमारा राम अनहित बाजितरा तिस तुन दरबारा राम आनंद अंदन बजे बाजे दिन सरैण उमाहा तै रोग सोग न दुख व्यापै जन्म मरण न ताहा रिद सिद्ध सुधारस अमृत भगत परे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार बंझा पार भम प्राण अधारा सुख सखी सहेलड़ियो मिल मंगल गाव है राम मंतन प्रेम करे तिस प्रभ को राव है राम कर प्रेम राव है तिसे भाव है एक निमक पलक ना त्यागिये गह कंठ लाइये नह ले जाइये चरण रज मन पागिये भगत ठगौरी पाए मोह है अंत कत हुना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म पही देख गुण अबनासी राम कह कर गह पूजा गही कट जम की फांसी राम गह पूजा दीनी दास कीनी अंकुर उदोत जनाया मलन मोह विकार नाठे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पही निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एक एक बखाणिए आत्म पसारा करण हारा पर बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक सी जान है जिन हर रस पिया बिलावल महला पंजमा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी बस आओ सखी असी पिरका मंगल गावे तनमान सखी तजमान सखी मत अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन लग चरण शरण दयाल प्रीतम
1: वाहे गुरु।

0: प्रभु को सिमरहे से सुखवासी
1: सिमरे सदा विनासी
0: सिमरन ते लागे जिने आप दयाला
1: नानक जन की मंगेर वाला
0: प्रभु को सिमरहे से पारुपकारी
1: प्रभु को सिमरे से सद बलहारी
0: प्रभु को सिमरे से मोक्ष।

0: मंडल
1: कई कोट ससियर सूर निखियतर
0: कई कोट देव दानव इंदर सिर छतर
1: सगल समग्री अपने सूत तार
0: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राजस्ताम ससातक
0: कई कोट वीर प्राण सिमरत यार सा

0: दुखना सुख दय करे।
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
0: नानक संत पावे तां लय मिलाए।
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे।
1: संत के दुखी को ध्यान ब्रह्माइय,
0: संत का दुखी उजड़ पाइय।
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मृतक की लोथा।
1: संत के दुखी

0: पै पाई
1: साब घट सके साब तिसके ठाओ
0: जब जब जीवे नानक हर डाओ
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमर

0: निसके संग सिखे उदरे नानक हर गुण
1: सतगुर सिख करै प्रतपाल
0: सेवक गुर सदा दयाल
1: सिख की गुर

0: संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समिग्री एकस काट माहे नौनिध अमृत प्रभ का नाम
1: दे मैं इसका विश्राम
0: सुन समाध

लाभ लोभ मोहताज भगूते इब तब फिर पछताई एक सरे वै ता गत मत पावे आवन जान रहाई।

अस संगारे ऊचो देखे शब्द विचारे ऊपरे आदि अंत तै लोए आपे करे कथे सुने सोए। ओहो विद्याता तन मन देहे ओहो विदाता मन मुखे सोए। प्रभ जग जीवन अवर न कोई नानक नाम रते पत हुई।

साच लिव लाई रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहनते रहे न कोई किस पै करो बनती एक शब्द राम नाम नरोदर गुरुदेवे पतमती लाज मरंती मर गई कूंगट खोल चली

सच करनी गुर बिचारी अगम गोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिया जान ले मलाई गुण गुंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिलिया मीत काम क्रोध काया को गाली जो कंचन सुहागा टाली कस कसवटी सहे सूताओ नदर शराब बने सचराओ जगत पशु अहंग काल कसाई कर करते करने कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई होर क्या कहिया किस कहन न जाई खोज खोज ते अमृत पिया खिमा गही मन सतगुरु दिया खड़ा खड़ा आखे सब कोई खड़ा रतन जुग चारे हुई खात पियंत मुए नहीं जानिया खिन मैं मुए जां शब्द पछाणिया।

तही सुख होए। चित बसे राचे हर नाए, मुक्त पया पत स्यो कर जाए। सीजे दे खुले एक गंड, छे नेत देखे जग हंड। तू पिशाम जे सम कर जाने, बंधन काटे मुक्त कर आने। साया चूखी जगत पलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना। सीजे जोबन जरुआ सिर काले, काया सीजे पई सबाले। जापे आप प्रभ तै लोई, जुग जुग दाता।

ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साथ प्यारी साई सुहागन ठाकर तारी डोलत डोलत हे सके फाटे चीर सिंगारे डाह पन तन सुख नहीं बिंडन बिंठी डारे डरप मुई करे अपने ढिठी कंत सजाने डर रखे आ गुरे अपने।

दे आखे सब कोई जय पावे तै दे गुरुद्वारे देवसी तिखा निवारे सोई टंडोलत टूं।

पापे पचे पचाहे फिर फाही फासे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ फाथा चुग चुगे नहीं बूझे सतगुरु मिले ता आखी सूझे।

हर जियो सोई तिसबिन राजा अवर न कोई रारे गरड़ तुम सुनो हर वसे मन माही गुर प्रसादी हर पाया मत को परम पलाही सो सहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस सबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बिचारे आप गया दुख काटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिया तन कच्चा भिक्षारे सहो सदा

कनकने कर था की सिंगारी मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहारी नानक गुरमुख पाईया हर सिंह प्रीत प्यारे हर बिन किन सुख पाया देखो मन बिचारी हर पढ़ना हर बूझना हर सिंह राखो प्यार हर जपिया हर त्याईया हर का नाम आधार लेख ना मिटे हे सखे जो लिखिया करतारी आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतारे करते हथ वड्याईया बूझो गुर बिचार लिखिया फेर न सकिया जो पावे त्यों सारे नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख पूले पचमुए उबरे गुर बिचारे उबरे गुर बिचारे।

बोले जोग जुगत बेद साई हाठी बाटी नींद न आवी पर कर चित न डलाई बिन्ना में मन टेक न टिकी नानक पूख न जाई हट पटन करे गुरु दिखाया सहजे सच वपारू खंडत निंद्रा अल्पाहारन नानक तत् विचारू दर्शन पीक करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह एक अंतर एक सरेगो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाई है पुरखा बहुर चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूजे जोग जुग तेम पाइए अंतर शब्द निरंतर मुंद्रा हमे ममता दूर करें काम क्रोध अहंकार निवारें गुर कह शब्द सुसमझ परें

मत खड़ी उंदो पखर पंचपू टोपी काया कड़ासन मन जगोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कवन सुगुप्ता कवन सुमुक्ता कवन सुवंतरे बाहर जुगता कवन सुआवी कवन सुजाए कवन सुतेरे पावन रहा समाए कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सुजुगता मनमुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सच समाए क्यों कर बादा सरपण खादा क्यों कर खोया

ते जोगी कहिया सोई अब गतो निर्मायलो उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुरु परते परम पद पाया साचे शब्द समाई लिया एक एक को सच एक का जाने होमे दूजा दूर किया जो सो जोगी गुरु शब्द पछाने अंतर कमले परगास्तिया जीवित मरे ता सब की सूझे अंतर जाने सर्ब दया नानक ता को मिले वडाई आप पछाने सर्ब जिया साचो उपजे सच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठौर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दे आपे परखे बख्श लिया एक आबेदन दूजे व्यापी नाम रसाहीन विसरिया सो बुझे जिसे आप बजाई गुर के शब्द सुमुक्त पया नानक तारे तार नहारा हौमे दूजा पर हरिया

गुरमुख मेल मलाई गुरमुख शास्त्र सिमरत बेद गुरमुख पावे कट कट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावी गुरमुख सगले गणत मटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता।

खाइया सारी जित गर्भ जाई सु कवन आहारी हिवे काकारी मंदर अगन प्रहान कवन गुफा जित रहे अवाहन इतुत किस को जान समावी कवन त्यान मन मने समावी हाउ हाउ मैं विचू खूव दूजा मेटे एको होवै जकरड़ा मन मुख गवार शब्द कमाइया खाइया सार अंतर बाहर को जाने नानके अग्न मरे सतगुर कै पाने सच पैराता गर्भ निवारी एको जाता शब्द विचारी शब्द बसे सच अंतर हिया तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बिक अग्न निवारी नानक नदरे नदर प्यारी कवन मुख चंद हिवे कर छाया कवन मुख सूरज तपे तपाया कवन मुख काल ज्योत निद रहे कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे कवन ज्योत जो काल संघारी बोले बाणी नानक बिचारी शब्द भगत सच ज्योत अपारा सच कर सूर वसे मिटे अंधियारा सुख दुख।

काल संतापी तत्तु तत् मिले मन माने दूजा जाए एक तकारे आने बोले पवना गगन गरजे नानक नीचल मिलन सहजे अंतर सुन बाहर सुन तेरे पवन सुन मसुन चौथे सुने जो नर जाने ताकू पाप न पुन कट कट सुन का जाने पियो आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख बिदाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन

मन समझाहे नौ सर सुबर दसमै पूर तै अनद सुन बजावे तूर साचे राचे देख हजूरे कटे कट सच रहा पर पूरे गुप्ते बाणी प्रगट होए नानक परख ले सच सोई सहज पया मिलया सुख होवै गुरमुख जागे नींद न सोवै सुन शब्द अंपर पर तारी कहते मुक्त शब्द निस्तार।

अपारो त्रैगुण मेटे शब्द वसाए ता मन चूक्या अंकारो अंतर बाहर एको जाने ता हर नाम लगो लगै प्यारो सुखमन एड़ा पिंगला बूझे जा आपे अलख लखाए नानक ताते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रस खाए ज्ञान की मुद्रा कमण औदू सिद्ध की कमण कमाई।

साचे रहे अकाई कवन बेद जिते अस्तर रही आन किते पोजन तृप्ता से नानक दुख सुख समकर जापी सतगुर ते काल न ग्रासी रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्दे जल बल ताता बिंद न रखिया शब्द न भाखिया पवन न साध्या सच न आराध्या कथ कथा लै सम कर रही तो नानके आत्म राम को लहे गुर प्रसादी रंगे राता अमृत पिया साचे माता गुर विचारी अगन निवारी आप्यो पिए आत्म सुख तारी

घटे आपे सब रंग माने साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिरे फरमाने मांगे नाम पाई एह विखिया तेरे दर्शन को कर बाने बनासी प्रभ खेल रचाया गुरमुख सोजे होए नानक सब जुगे आपे वरते दूजा अवर न कोई एक ओंकार सतगुर परिचाद राम कली की वार महला तीजा जोदे वीरा पुरबानी की तुनी श्लोक महला तीजा सतगुर

परम कटिया ज्ञान प्राप्त हुई नानक एक नदरी आया जै देखा तै सूई पौड़ी सच्चा तख्त रचाया बैसन को जाई सब किश आपे आप है गुर शब्द सुनाई आपे कुदरत साजियन कर महल सराई चंद सूरज दुई चानने पूरी बनत बनाई आपे वेखे सुने आप गुर शब्द ते आई

पौड़ी वेके सिष्ट उपायन सब हुक्मे आवे जाए समाही आपे वेख विकसदा दूजा को नाही ज्यों पावे तू रख तू गुर शब्द बजाही सबना तेरा जोर है ज्यों पावे तिवे चलाही तुद जे वड मैं नाही को किसे आख सुनाही। श्लोक महला तीजा परम भुलाई सब जग फिरे फावी होई पाल सो सह सांतना देवी क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई है रख अंतर रखिया और तारी नानक कर बैठिया सौ पाया जा की कृपा की करतारी। महला तीजा तंदा तावत दिन गया रैन गवाई सोए कूड़ बोल बिख खाया मनमुख चलिया रोई

सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ सचन सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनाम

सब सुख दाता राम है, दूसर नाहि ना कोई। कहो नानक सुनरी मना, तह सिमरत गत होई।

नर चाहत कछ और औरे की और पई चितवत रह उठ गौर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए

मन में तरै गुमान, नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनाना। सिर कंप्यो पग डग मगे, नैन ज्योत ते ही ना। कहो नानक एह बिद पई, तो नहर रस लीना।